0: अभी ब्लेसिंग चाहिए, विश्व की आत्मा को मेहनत नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो आपका बैलेंस सुधाई ब्लेसिंग दिलाएगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे
2: जिम्मेवारी

कुछ नहीं मनाएंगे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं, कि अभी फिर भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं,
4: बात सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी पाप दादा नंबर 1 की स्टेज
2: जन्म 60 वर्ष

Bursche, der Murat. Yes.

0: Nancy.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

siate parau. Man, what is unscrewed?

Awesome.

0: इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सवाली करेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल के लोग

decidi.

好き。

0: बनाओ, मातानी बन, निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ, मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, सारा दिन चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्म, तीनों द्वारा मातानी बने, समय परमान अभी तानी नहीं, कब कब दान किया नहीं,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: 있었다. 이튿날에 재수를 보니까 사던 게 보초다 사사던
1: Bobby.
0: रखेगा तो बिंदी लग जाती, और अब तो तेरे नेत्री हो इसलिए इन तीन बिंदियों को
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सफलता।

असफलता की बात को भी सफल

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Kawanku.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो। पटको नहीं, कभी किस सीट पर कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के बावजूद देखो, कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी, कार्टून शो है। अपने सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आया, आने दो, देखते हैं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए, जैसे पता नहीं कहाँ गायब है। देख भी रही है लेकिन गायब, बोल भी रही है लेकिन गायब रूप में बोल रही है। वो चेहरा अच्छा नहीं, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। सीरियस नहीं चेहरा करना, क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा है मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना, आता है। आपके चलचित्र देखो ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: अपनी एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से। उस द्वारा कराओ। लेकिन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सीप

सब जज बन गए हो एक दो के, बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष और बाकी मीठे का

जिस बात

0: संकल्प याद की पावर कम नुकसान होता जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो तो ये तो आत्माएं संबंध है वृत्ति से वाइब्रेशन होती है वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता लेकिन मूल है वृत्ति अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी पाप की प्रत्यक्षता हो तो तीव्र गति का प्रयत्न है सब अपने वृत्ति को अपने लिए दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो नॉलेज फुल भले बनो लेकिन अपने मन में धारण नहीं करो नेगेटिव का अर्थ है किचरा अभी अभी फुर्ती पावरफुल करो वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ वायुमंडल पावरफुल बनाओ क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया वाणी से परिवर्तन सिक्का से परिवर्तन बहुत धीमे गति से होता है लेकिन बहुत धीमे गति से अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन स्वरूप बन रहम दिल बन शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: I'm

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब किचरा कहते हैं, किचरा दे दो बस, अच्छी चीज नहीं तो किचरा दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचरा है ना, किचरा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। बता दे तो यही है ना, क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थिति का नाम ही नहीं हुई लाने वाली। स्वस्थिति शक्तिशाली सभापति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे, फरिश्ते चमक रहे, सभी बच्चे चमके हुए दिखाई दे। अभी इसीलिए पर्दा खुलना रुका हुआ है, दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: विश्व का कल्याण

क्यों बना साकार पाठ परिवर्तन।

0: नहीं धारण करता तो आप इतनी अल्प में यहाँ पहुंच नहीं पाते क्यों? के वायुमंडल की प्रांतिया इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप जल्दे से जल्दे बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Cześć.

Ciao.

shit.

Tiens.

believe in me.

Jamie.

विश्वसेवको सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा भी

Beach.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Thank you.

Peace.

Hayat kitabı.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, समय पर मान, हर एक बच्चे से ये शुभ आशा रखते हैं। और

विभाग दादा 20% छुट्टी देते है। मंसूर मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच्ची

खाने और गर्म में पास हो के दिखे। हो सकते हैं, हो सकते हैं टीचर्स बताओ, हो सकते हैं। 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रेल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय, 15 दिन के फुल विजय मुश्किल है कि इजी है? इजी है, हाथ उठाओ, इजी है, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकते हैं, कर सकती है ना। 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है। क्यों कपा?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: I should.

0: कोई गलती हो जाती है तो दूसरे दिन विशेष
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्राह्मणों का काम क्या है? शोक लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचती है, पाप की महिमा की ऑटोमेटिक मीठे मीठे दिल गीत गाती। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं ना? मुश्किल किसको लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ, सहजे ना, सहजे कान तो हिलाओ, सहजे मुश्किल तो नहीं है ना? जानबूझ के सहज से अटक कर मुश्किल में चले जाते हो। है मुश्किल नहीं? बहुत सहज, क्योंकि बाप जानते हैं आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज कोई है मुश्किल वाला? आप पीछे वाले मुश्किल लगता है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना? ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना। वो तो मुश्किल ही होगा ना? युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ से बोलते वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता। ऐसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Swap.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संस्कार

0: Smeko. Avko Samiplan. Har ek isme kya karna hai? Har ek apne rahe hue sanskaron ka sanskar kar lo. Samay samay baje. समय को समीप लाने का यही तरीका है जो विघ्न डाल रहा है। रहे हुए संस्कार
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: नहीं होती।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: What?

0: इस बात पर अटेंशन दिला रही है, किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वाद के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़ेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना के ले जाना। बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उठ जाओ तो माया देखती रहेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल चाहे अज्ञानी आत्मा है, चाहे प्रमाण आत्मा है, सभी को खून का दान, खूनों का सहयोग देना आवश्यक। आजकल परमात्माएं भी सैंपल देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। आपस में भी क्या कहते हैं, कौन बनाया, तो प्रत्यक्ष रूप में कौन मूर्त देखने चाहते। हिंसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलो, सकाश फैलो, वाइब्रेशन व सकाश सकाश दे सकते।

0: con casa y yo.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं 2500

0: 想si bajarte de ti o prumapapua fatan me quejarte lejen pap que ti jesse sacar rob me sada bachon ke saath rahe aise watan mein bhi rehte bachon ke saath hi rehte akele nahi rehte बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता अकेले नहीं रहते साथ में रहते साकार में तो साथ खान बहु साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाती रहती जैसे चित्रों में दिखाती है ना एक एक कॉपी के साथ toca a mena. ¿Por qué? Y si me besirete.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

そっか。

Macam.

necesito un abalón coqueteo.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप की मदद तो है लेकिन समय पर ले।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Coffee.

wishes. Sameka Kazana. Fala.

Svazku. Safalku.

समय सफलता का प्रारंभ

Awesome.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। Awesome.

Peace.

Joy.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय

fjädrat sank alla. Då sådär vi så näge. Just so jealous.

Dusra ab hamari return journey hai. Ek hi shabd return is

0: संकल्प किया रहा पाप का बोल किया रहा पाप का कर्म किया रहा इसको ही कहा जाता है
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का, बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का ऐसा सर्विस तो करते हो, वो तो कहने की बात नहीं, अच्छी कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते, फिर वारिस भी बन सकते। ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखी है वो लिस्ट, अच्छी अच्छी है लिस्ट में, जो नाम पाला कर सकते। अभी उनको प्रत्यक्ष करो, आपके बजाय वो भाषण करें। अनुभव सुनाए आप,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा, ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन बोलते हुए बोल नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: It is

Bonita.

कुछ

Shake. Polemon Sabata. Yeah.

Savoir.

casa da vovó. Papo, você tá...

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

यहाँ शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं,

0: az válvásabb diádrakna. Akár kapé múd a fóda, válvásabb diádrakna.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों। क्योंकि बाप दादा देखते हैं, सोचो जो आप कोटो में कोई में कोई निमित बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है, मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है, लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए? खुशी हर एक ही अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
4: ठीक है तो।
3: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सुखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनको भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले बताए तो रिजल्ट जमा

सदा स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे। बिना बिना संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट

Boneca cata chamaneu. Mira pan. An pavio. Chamakarne ka.

Foretti. मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोर संत

0: छत्र छाया मेरे ना, बाप दादा के कंबाइंड रहना। छत्र छाया है श्रीमत।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Just

achieved me. Achievements.

Sorry.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: ஜனம்.
1: I don't know.
0: Çok

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Sure।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इच्छा पाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली आत काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लाऊंगी, ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके देगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे मृत चाहे जानते थे और क्या

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कराने वाले वचन किसको चलते

Listen.

Tá bom.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का निर्माण हो जाएगा। निमित्त भाव
4: बन जाए।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चाहना बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देखे बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। उस समय सोचो ऐसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार। बाप के संस्कार

रही हुई।

मिक्स हो जाते हैं ना, अच्छे कुछ अच्छे पाप के कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना।

0: संस्कार बनते कैसे हैं? वो तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे ये भी बाप दादा से रोरियां करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया, शक्तिवान भी नहीं सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्रह्मण जन्म लेते हुए दिए, याद है अपने जन्म का वरदान हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर शक्तिवान भव का वरदान दिया। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती। वो क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर आर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप आर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो

0: सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है। उस स्वरूप में स्थित होके मालिकों वरदान दोनों स्वरूप की समृद्धि के स्थिति में रह के आदर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और पाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाते। ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर आप कहते हो ना कि बाबा आपको अब याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। अनुभव हाथ उठाओ, अनुभव है। अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो, बाप हाजिर हो जाता, हसूर हाजिर हो जाता। तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है, तो मालिक बन के आर्डर करो। मालिक बन के आर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए आर्डर करते हो। तो मालिक ही नहीं है, आर्डर क्यों माने?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रतिज्ञा, चाहते जैसे वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करते हो, वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव कौन और कर्म का ज्यादा कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देख स्थिति द्वारा बाप को प्रतिज्ञा करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसा कोई बन सकता है, तो आप उनको ये प्रतिज्ञा में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रमाण को ज्यादा मानते, सुनने से भी ज्यादा देखने जाते। चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो।
2: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उठाने से आपको ये याद उठाना भी मदद।

0: ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी सुबह से भी किया तो किया तो सही ना। तो ऐसे प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का तो लाइन में आ जाएगी ना। तो जब भी कोई ऐसे हो उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया था, याद करो। अपने आप को ही फायदा है। अब आप तो खुश हो, मदद मिलेगी। ऐसे ही याद करने से इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने अपने दिल से प्रॉमिस किया तो वो मदद मिलेगी। क्यों कब
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Ocho. परिवार की तरफ से

0: Lord Bodywarko. Take Dolia.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Okay.

आपसे पूछो कि समय पर अपने प्रत व दूसरों के प्रत कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है, तो अनुभव की अथॉरिटी एड होती जाती है। चेक करो अपने आपसे पूछो कि ये सारे खजाने जमा

0: चेक करके अभी भी खजाने भरा सकते। अभी चांस है, फिर चांस भी खत्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना भराए लेकिन भरा नहीं सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि Bye.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जय विदेशी, जय भारतवंश है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो है, हिम्मत समय हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना पांडव है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ओली में क्या करते? आपने भी अपने जीवन को रंग बना दिया।

अर्थात पवित्र मंदिर। पवित्र बने हैं ना, पवित्रता का व्रत सभी ने लिए है। नपका नंबर वार भले with

0: kill kebab. Sedap betul. Hey, betul suara. Pernah nih berita suara apa betul tak? Tuh lagi. Fisik aja. तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग। तो जैसे Holy भी सबकी है, आप चलाते हो वो भी चलाते हैं। फिर बनाते बिना चलाने के बनाते नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Slam.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मधुबन निवासी अर्थात करम में मधुरता और वृत्ति में स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों और याद की पावरफुल याद की वाइब्रेशन फैलाने तो कम से कम चार घंटे से समझो हम ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहा। ये तो आपको अनुभव है अच्छी तरह से। मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का तो नहीं, बहुत जल्दी फैलता है। अनुभव है ना, मानवों को अनुभव है जो मधुबन में सुई भी गिरती है ना वो भी आवाज पहुंचता है। सन्यासी बनना कोई छोटी सी बात नहीं है। मधुबन निवासी बनना अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। हाँ। देखो स्टूल गिफ्ट भी बहुत मिलती है ना मधुबन को।
2: जाएंगे तो बहुत
1: और कितना सामान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं।
2: मतलब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्वचिंतन इसको नहीं कर जाते, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना या ज्ञान की पॉइंट्स को
2: होती है, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सांस करने में घबराओ, क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम साथ खुशी से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Tía. Je pap dat aan de salt medica. Mejarati. Pachoka. Oh.

बच्चों की नहीं।

0: आपदाओं निवारण करूं, ऑफिशियल दरबार लगाई, हर रोज ऐसे अपने दरबार लगाओ स्वराज दरबार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Jesse Sainz. Peace.

Chador. Fellow. Chabar.

sick.

अपने शक्तियों के सकाश से See.

essai à voir.

0: Ciao. 10 ciao. Ciao.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सफल करो, सफल

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा आज भी सभी बच्चों को चाय यहाँ बैठी है, चाय सेंटर्स पर बैठे, चाय समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल इसलिए देखते हुए भी हो।

समा होता जाता है दुगना दुगना सब।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Awesome.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने आवे।

सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा को जैसा समय हो

0: Si existed me pahunchi
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा

0: सामने जाते रहे तो देखने आती थी या फरिश्ता रोपन होता था। गरम करते भी बातचीत करते भी
1: प्यारा प्यारा लगता है, आत्मक प्यारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह
2: लेकिन जो आया वो गया कैसे।

संयोग हिम्मत फैला।

0: सभी की भ्रमण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी रहना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन, कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगी। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, ये टीपी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार खत्म हो नहीं है, ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट, जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सके। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो, तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे, संकल्प किया निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव करेगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी। अभी भी

0: Schaukel.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार।

यार के पीछे नहीं सोचो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे। जितना हो सके योग्य आत्माएं देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा आते रहो। आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आएंगे। अनुभव ऐसी चीज है, स्वयं को भी अनुभव में बढ़ाओ। जितना जितना अनुभव में और महादानी बन के सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है ना समस्याओं में, दादियों को भी समय देना पड़ता है और अपने को भी समय देना पड़ता है, वो समय बच जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप मदद का जरूर है और अंत तक रहेगी, ये गारंटी है, लेकिन किसके किसके मदद का जो हिम्मत का पहले पांव आगे करते हैं, फिर पाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाने और श्रम को बाबा आप कर लो ना बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा ठीक है पहले पाँव तो रखो, एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो क्या कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत है। पाप को कहने के पहले ये चेक करो हिम्मत का पांव बनाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव भरो, इसीलिए गया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले वाह, निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो पाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विशेष बाप दादा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: este neka. Το φιέρατ σαν καλαπκό. Σαμάπατ καρνάε. Το κι ασιάντατ μόκο. Σουκ σιάντικα αν μόκρασαι. अपने भाई बहनों को दे तरस तो पड़ता है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देंगे

0: ये वाह शब्द भूलना नहीं,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जानते भी।

есть ты. Чай.

बड़ी सबसे पहला स्वमान है जिस पाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो।

Peace.

cerai.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा सखा भी बन जाते, इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में जब कुछ नीचे ऊपर हो,

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये मिलन विचित्र है, सब रिस्पांस में वाह वाह वाह वाह कह रहे, लेकिन हर एक अपने अपने दिल से अपने आवाज में कह रहे, और बाप दादा इतने सब बच्चों का रेस्पेक्ट

Three.

里，吸引木合适，哈尔巴加克。

Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाएगी। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं होता है क्यों? वैसे नहीं आसन जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र स्वर्ग मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्रह्म जीवन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बात

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप सदा बच्चों को कहती है, कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है। उसके आगे माया दूर से नजदीक भी नहीं आ सकते। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ।

0: अच्छा लगता है ना साथ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे हो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सब जान

vendría. Sí.

0: सीट पर सीट नहीं रहते, बिना सीट पर बैठने वाले के ऑर्डर कितना भी करो तो मान ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधन नहीं है और ख्वाब को तो वैराग है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग, पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो के कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का फल है। लेकिन वृद्धि की बात ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में साधनों के वश फस्तों नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, शूस करते हुए उनकी प्रभाव में नहीं है न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी आवश्यकता है विश्व में अति में जा रही है, तो अभी सच्ची वैराग्य वृत्ति चाहिए और वो वायुमंडल बनाने वाले आप पहले स्वयं में फिर विश्व।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: टाइटल दे रहा

0: इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना, दीवार पुरुषा रहती हूँ। ठीक है, सभी को मंजूर है, मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसीलिए अभी तीव्र पुरुषार्थ बढ़ना ही है। समय की पुकार तीव्र पुरुषार्थ
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बच्चों

What's your game?

ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಬೈಂಡ್ ಕರ್ಣ ಸದಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೇತೆಯೋ ಅಕ್ಕೆಲೆ ಬಿ ಬಂಜನ್.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Siete.

रिश्ते बन के तो ना अभी सेवा में विशेष विशेष

carnival.

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रही है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। पुरुषार्थ के प्रारब्ध का अनुभव अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की तीव्र पुरुषार्थ थी, सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं देवता देने वाला। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ, मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले ये करे, ये दातापन की निशानी नहीं। कोई करे

就是个人，都是你的想念，你玩不下的机，是的，你的妈呢？感谢。Sarvadwara Dilkasa

चारों ओर के बच्चों को मोबाइल

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मंगला से तो सफलता है, क्यों नहीं हो सकता? आकर तो समय आएगा जो सब साधन आपके तरफ से यूज हो, ऑफर करेंगे, आप ऑफर करेंगे, कुछ तो मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है, सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे हमारी को सहयोगी बनाओ। सिर्फ ये बात बाकी रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वो आप ही पीछे है। बस रब आपके अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ। एवानिटी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है बस। अच्छा स्मार्ट अच्छा का नहीं है। और
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उससे ज्यादा

Jessica.

Sei jung.

Listen.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे बस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। तो बाबा भी बंदा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाबा सबको लगा रहा
4: तेरे बाप दादा सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं। सुंदर दृश्य आप

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरे

Cosa

विशेष कमजोरी हो। आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी को। वो कमजोरी

0: चुप भावना से टोकने के रूप से नहीं पूछना। चुप भावना से एक दो के सहयोगी बन, एक दो को आगे बढ़ाने की शुभ भावना से।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

awesome.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम।
3: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी दूसरा पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देख खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत बहुत बहुत पदम पदम

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, जैसे ये भाषणों द्वारा वाणी द्वारा सेवा का उपांग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही

0: adhesiva. Ceri orcelazioni. Uscabias. Jesse Pajero Cabias. Karte karte hushyar ho gayi hota. Aise abhi chehre aur chalan se किसी को खुशी का वरदान दो, ये अभ्यास करो. क्योंकि समय कम मिलेगा.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सत्तर वर्ष तो बाप दादा ने भी अल्लाह पहले पन और आलस और बहाने बाजी खेल देख लिया। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल खूब देख के बचोगे। जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अल्लाह पहला पन आलस

जागरण देखने चाहते, कभी भी देखो क्रोध आता है, अपमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताती है, एक बाप दादा को ट्रेडमार्क दिखाई देती है, कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते, ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात तो रही है, ये होता ही है, ये क्या है, अलबेलापन नहीं है, ये भी तो करता है, मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया, तब हुआ, मैंने किया रंग वो नहीं कहेंगे, ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ, दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज, ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने कहा वो नहीं होगा, वो करे तो होगा, बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते, आजकल क्रोध का बच्चा रोप, रोप भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो क्या आज चार का भी व्रत लेंगे जैसे पहले, विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया, क्या ऐसे ही चार का संकल्प ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ, और बाप जो बार बार कहते हैं वो याद नहीं, उसने जो किया वो याद आ गया, ये बहानेबाजी हुई ना।

0: जो चार को हल्का कर देते तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ये नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे के नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे। वो तो 3-4 मास के बच्चे के करते हैं, तो आपके बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो, उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे। हाथ बाप दादा नहीं उठाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते। लेकिन जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, बाहर जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन बाहर को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प की कमी हो जाती हो जाएगा। चलता है चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने नोट की है बातें, अपने हिम्मत नहीं चलती ना तो कहते हैं महारथी भी ऐसे ही करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है समय महारथी है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? उस समय वो महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमजोर करना, दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब लेने आए हैं, लेकिन हिसाब का किताब खत्म कराने की गिफ्ट लेने आए। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब बहुत बड़ा किताब है, उसको खत्म करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: சுந்தரம் சத்யம் சிவம் சுந்தரம்.
1: Sakaj de sakte.

इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार से भी लोग भी कहते हैं जो करना है वो आप कर लो, जो सोचना है आप सोच लो।

सोच पश्चात

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ।

0: शरद कर रही है। जमा का पुरशरत अभी कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी स्टेज है। बाप दादा कहते हैं, अगर

सारे लाइफ में हद तक का मेरापन, हद तक का मैंपन से न्यारी। रही है उसकी रिजल्ट, बीमारी कितनी भी है सिन्यारी। एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों? निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निर्स्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते? बार बने हैं।

İsi ama kızı utsası ortecelo babko ap benişçe Hello.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ, कोई न कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

sapi. Kerasan sekaro. Himmat kabinean. Sarva Shakti.

कैसे करूं क्या करूं नहीं।

चाहिए।

Rettende Stimme.

सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो।

Ještě budík.

चल।

ci banate. Check is up.

sacar rofa melão.

So

is at the God saying, Yeah.

Siete. Ey. Ese.

0: नहीं कहते बाप दादा है या नहीं है, ये नशा रखो है और होंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।